तेरत प्रेत पुकार आदि करी को नह राखे करते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यो जग रचना जय देखु हृदय विचार कहु नानक भज राम नाम नित जाते होत उदार। देव उदारी महला नौवा। जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत रहाओ। मेरो मेरो सबै कहत हित सुबद चीत अंत काल संगी नहीं को ए अचर्ज हरीत। मन मूरख अजू न समझत सिख दे हार्यो नीत। नानक भोजन पार परे जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सह पंगुर प्रसाद। राग ब्याहगड़ा चौदह महला पंजवा कर दूजा दूतन संगरिया प्यंगन बसरिया अनक परिया। तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहा मितन मोहरिया अनको मेरिया बिच घूमन करिया। सगल बटरिया बिरख इकतरिया बहु मंदे परिया थिर साध सफरिया। जय कीर्तन हरिया नानक सरन हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग ब्याहगड़ा महला नौवा। हर के गत न को जाने जोगी जति तपि पचहारे और मनोक सियाने रहाऊ। छिन में राउ रंक को करई राउ रंक डारे रीते परे परे सगना में जयता को विभारे अपनी माया अवसारे आपे देख नहारा। नाना रूप तने बोरंगी सब ते रहे नियारा अगनत अपा लख नरंजन जय सब जग परमायो। सगल परम तानक प्राणी चरण ताहि चित लायो। राग ब्याहगड़ा छंद महला चौथा कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम तिहाई है मेरी जिंदड़िए गुरमुख नाम अमूलो अमूले राम। हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकूले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए अंत नगाह डूले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन

काई गंधन रहणु रताय तकाई शब्द सोरत नंगाई रंग नात रास नहीं बिदिया मनमुख पादुंग वाई साध सभा मैं सहज न चाकी अंजी बारस नहीं राई मनतानो तानो अपना कर जानिया दर की खबर ना पाई अख मीठ चलिया दियाराम घर दारू दिसै ना पाई जम दारू बद ठौर ना पावे अपना किया गुमाई नजर करे ताय अखी विखा कहना कथन न जाय कनी सुन सुनो शब सलाई अमृत हृदय वसाई निरपुण रंका निरवैर पूर्ण ज्योत समाई नानक गुरु परम ना पागाए सजनाम बड़ाई सोट माला पैर दुत गई पुड़ धरती पुड़ पानी अस चार कुण चौबारा सकल भवन की मूर्ति का मुक्ति रटक साला मेरी साहेबा तेरी जोज बिडान जल तलऊ मई अल भरपुर लीना पे सर्व समान रहाओ जन जन देखा दे जो तुम्हारी तेर रूप कनिया एक द्रूप फिर परेशाना कोई ना कैसी ही जे अंड जेत जहू उत प्रसिद सेत ज के तेरे कीते जनता एक पुरम तेरा देख सुभन माहि रवंता तेरे गुण बहुत मैं एक ना जानिया मैं मूर कैश दी जय प्रणत नान सुन मेरे साहेब डुबदा पथ डूंगली जय सोट माला पहला हाँ पापी पथ तू परम पाखंडी तू निर्मण निरंकार अमर जाग परम रास हूरा ते ठाकुर शरण हूं तुम्हारी करता तू मैं मान महान मान मत नाम धन हूं पल सच शाबद समान राह तू पूरा हमूरे हो चे तू गौरा हाम हौरे तुझी मन लाते अनज प्रभाते यार सन जा मन रे तुम साचे हम तुम्ही राचे शब्द पेत फो नहुं साचे अनस नाम रते से सुचे मर्जन में से काचे अवरण दिसक सला इत शरीक ना कोई प्रणत नाग दासन दास गुरमत हु जानिया सोई सोट माला पहला अलख पार अगम गोचर काल ना कर माग जात जात जो निसंभव नत सुभाव ना पर मा सच सचार बिठो कुरबाव नाथ रूप वर नहीं रेखिया सच शब्द निशान रहा नत मात पिता सतबंध पो नत काम ना नारी अकुल निरंजन अपर परंपर सगली जोत तुम्हारी खट खट अंतर ब्रह्म लुकाया खट खट जोत सुभाई बज्र कपाट मुक्ति गुरमति नृपताड़ी लाई जंतु पाए काल सहर जनता वसगत जोगत सुभाई सतगुर से पदार्थ पावे छोटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे बिरले सुचे चारी तंत को परम तंत मिलाए नानक शरण तुम्हारी सोठ महला पहला जमीना बिन पानी त्यो साकत मरे पे आसु त्यो हार बिन मरिये रे माना जो बिरथा जा बैसासु मान रे राम नाम जासु ले बिन गुरु रासु क्यों लो गुरु मिला हारु दी रहाउ संजन अमर संगति गुरु तीर्थ हो अठ सत तीर्थ मजना गुरु दर्शु प्राप्त हो जिन ज्यो जोग जद बारा ताप नाहि सत संतोख त्यो नाम बिंदे हुरी जा मारा अंतर दो गो सागत प्रेम ना पाइये हर पाइये सतगुरु पाई सोख दुख जाता गुरु मिले कहो नानक सिप तू समाज सोट माला पहला तू प्रभदाता दान मत पूरा धारी भिखारी जियो क्या मैं क्या मांगो के तरना रहा जना प्यारी जियो कट कट रब रहे बनवा जाथर मेल गुप्त वरता गुर शब्द देख निहारी जियो रहा उमर प्याल काश दिखाओ उमर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्म जोनी हैपी होनी कट पीतर देख मरारी जियो जन्म मरण कहो जग बापड़ो अंदन जा भगत विसारी जियो सतगुर मृत गुरमत पाई सागत बाजी हारी जियो सतगुर बंध तोड़ निर निरारे बोर नगर मझारी जियो नानक ज्ञान रतन प्रकाश हर मन वस्य अलंकारी जियो सोट माला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुरपाही जियो छोटो बेस पेख चतराई दुबदाय फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव कर अमृत गटमाही जियो रहाओ गुण छोड़ गुणा को तावो कार आप गुण पछताही जियो सारा अवसर की सार न जाने फिर कीच बड़ा ही जियो अंतर मैं लोभ मोह झूठे बाहर नाम का ही जियो निर्मल नाम जपो सतगुर मखाऊ अंतर की गात ताही जियो पर हर लोभ निंद कूट ते आगो सतगुर शब्द ही फाल पाही जियो निर्मल जो भावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोट महला पहला पंच पदी अपना कर मूसत राख ना साके की पर कर जो हन लागा घर दर राख जे रास जाखे जो गुरमुखउ सेवकउ लागा मांड सामझ कावन मात लाग नाम बिसार अन रस लोभाने फिर पछताए भागा रहा आपद को हर खु जात को रोवे दुख सुख नाली लागा आपी दुख सुख भोग भोगा वाय गुरमुख सुवन रागा हर सुपर अबर क्या कहिए जन पिया सो तृप्तागा माया मोह माया मोहत जन उमरास खोया जा साकत द्रुमत लागा मन का जियो पवन पात देही देई मैं देव समागा जे तू दे हर रस गाई मन तृप्त हर लिब लागा सा संगत मैं हर रस पाई गुर मिले जम पागा नानक राम नाम जब गुरमुख हर पाए मस्तक भागा छोट माला पहला सर्व जी सर लेख तो राहू बन लेखा नहीं कोई जी आप ले कुदरत कर देखा हुक्म दिलाई सोई जी।

जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभ पाने खन में अवर खने में अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो रो गूड़ो गैर गवीरो उच्चा उच्चो अगम पारो साग संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पिया पेकत ही नानक प्रताप परख निर्बाणी सोठ महला पांजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सदानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आए पूर्व लिखिया पाई एवं तेरा पाई राम संतन स्यों मेरी ले वा देवी संतन स्यों बेहारा संतन स्यों हम मालाहा खाटिया हर भक्त परे भंडारा संतन मोको पूंजी संपे तो उतरिय मन का धोखा धर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटे हो सगलो लेखा महानंद पहे सुख पाया संतन के प्रसादे कौ नानक हर से मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोठ महला पांजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जाने राम नाम संकर बिहारा पावे पद निर्वाने प्यारे तुम ही रो सुखदाता गुरपुरे दिया पदीसा तुम ही संग पराता राव काम क्रोध लोभ मोह बेमाना ता मैं सुख नहीं पाइये हो रेन तू सगल के मेरे पूज मन तो आनंद मंगल सुख पाइये काल न पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम यो मनुआ अकाल मूर्त गुरदेवा गोविंद मोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम बर्तन नामो वैलेवा नाम नानक प्राण धारा सोठ महला पांजवा मृतर को पायो तन सासा बिचरतान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पह स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख विडाई ता की कीमत कह न जाई राम दुख सुख कर टायो डेरा अनंत मंगल विश्रामा मन बाशद पल मिले अचिंता पूरन होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गया वन जाने निरपा पहेर दे नम बसया अपने सतगुर के मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम पागा कौ नानक ताके पूर करमा जांका गुर चरनी मन लागा सोठ महला पांजवा रतन चाड़ कौडी संग लागे जानते कछु न पाइये पूर्ण पार ब्रह्म परमेसर मेरे मन तन सदा ते आइये सिमरो हर हर नाम प्राणी बिनसे काची दे अज्ञानी राम मिर्ग तिसनार सुपन मनोरथ ताकि कछु न बढ़ाए राम भजन बिन कामनावस संगन काहू जाए हूं करत ब्याए वरदा जी को काम न कीना तावत तावत नै तृपतास्या राम नाही राम नाम नहीं चीना साध विकार बिखे रस मातो असंख कते कर फेरे नानकी प्रपाहे बिनाती कट हो अवगण मेरे सोठ महला पांजवा गुण गावो पूरन विनासी काम क्रोध बिख जारे मह बिख अगन को सागर साधु संग उदारे पूरे गुर मिट्यो परम अंधेरा भज प्रेम भगत प्रभ नेरा राव हर हर नाम निदान रस पिया मन तन रहे अकाए जत कत पूर रहो परमेसर कत आवे कत जाए जब तब संजम ज्ञान तत बेता जिस मन बसे गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताके पूरन काला काल कलेश मिटे दुख सगले काटी जमकी पासा कौ नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पहे बिगासा सोठ महला पांजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामे मेरा गुरु हुआ आप सहाई सुख सहजनंद मंगल रस अचरज पही बढ़ाई राम गुर की शरण पहे पै नासे साची दर गए माने गुण गावत राध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उत्त संगत साध प्यारी सद बलिहार जाऊं प्रभ अपने जिन पूरन पै जस बारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया प्यो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती कर आया सोठ महला पांजवा प्रभ की शरण सगल पहलाते दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ते आया
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਿਨਾਸ।

को गुण राख लो सरनाई सोठ महला नोमा माई मन मेरो बस नाही निस्बासर विखियन को तावत कह बिदरु को ताहिर भेद प्राण सिमर।

सहसा शोभे, मन को पा में सहसा होवे, अंतर चिंता नींद न सोवे, ज्ञानी जागे सबे सुपाए, नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी, सो से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर एक त्यावे एक एको हर सत्या, हर एक वर्त एक एको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तेन डर सट कत्या, गुरमति देवे आप गुरमुखा जपया। श्लोक मना तीजा, अंतर ज्ञान आयो जेत केश सूजी पाए, बिन डिठा क्या सराइये अंधा अंध कमाए, नानक सब पछाणे नाम बसे मन आए। महला तीजा, एका बाणी एक गुर एको सब विचार, सच्चा सौदा हट सच रत्नी भरे भंडार, गुर के पाते पाइये पाइयन जो देवे देवनहार, सदा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार, बिख बिच अमृत प्रगटिया गुर कर्म पिया बनिहार, नान सच सलाहिये तन सवारन हार पौड़ी, जिना अंदर कूड़ वरते सच ना पावे ही, जे को बोले सच कूड़ा जल जावे, कूड़ियारी रजे कूड़ ज्यो बिस्ता काग खावे, जिस हर होए दया कृपाल सो नाम त्यावे, हर हर गुरमुख नामदार कूड़ पाप लह जावे। श्लोक मना तीजा, सेखा चौखड़िया चुवाया चुवाया, ए मन एक तू कर आन, एहर तेहर छट तू गुर का सब पछाण, सतगुर अगे टह पो सब किस जाने जान, आसा मन सजा तू होए रहो मेहमान।

0: पर्थ के संतोख नायो आंदन जलत फिर विहाये कूक पुकार न चुके ना संसार बिचों जाए हे नानक नाम बिहुनिया मुँह काले उठ जाए पौड़ी हर्ष मेल प्यारे मेल पंथ दसाई जोहा दसे मित तिसको बल जाई ही गुण सांझी तेन सो करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा नेत सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सो जी पाई ही। श्लोक महला तीजा पंडित मैल चुके जे वेद पढ़े जुग चार तेरै गुण माया मूल बिच हुमे हुमा नाम विसार पंत पुले दूजे लागे माया कै व्यापार अंतर तिसना पुख है मूर्ख पुख्या मुए गुबार सतगुर से भी सुख पाया सच्चे सब विचार अंदर तिसना पुख गई सच्चे नाए प्यार नानक नाम रते सहजे रजे जिना हर रख्या उतार महला तीजा मनमुख हर नाम न सेव्या दुख लगा बहुत आए अंतर ज्ञान अंधेरे सोधना काई पाए मन हर सहजना बीजो भुखा के अगे खाए नाम दान बिसार दूजे लगा जाए नान गुरमुख मिले बड़ियाइयां जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जे मन तन मुख हर बोले साहार पावनी जो गुरमुख चखे साधना तृप्तावनी गुण गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा हासी सिर जो अंक सह अहन ज्यो सिर ने सिर दे मन तन अगे राख कै उबी सेव करे गुरमुख आप संभारिए
1: सब राज सुख काले नानक गुरमुख बुझिए जा पे नदर करे महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रवान नानक कुल उधारे अपना दरगह पावे मान पौड़ी गुरमुखी सखियां सिख गुरु मिलाईया एक सेवक गुरपास एक गुरकारे लाईया जिना गुर प्यारा मन चित तिना भाव गुरु मिलाईया एक सेवक गुरपास एक गुरकारे लाईया जिना गुर प्यारा मन चित तिना भाव गुरु दिवाईया गुरसिखा इको प्यार गुरमित्ता पुत्ता भाइया गुर सतगुरु बोलो सब गुर आख गुरु जीवाईया। श्लोक महला तीजा नानक नाम न चेतनी अग्ञानी अंधले अवर अवरै करम कमाहे जम दर बदे मारिये फिर विष्टा माहे पचाए महला तीजा नानक सतगुर सेव नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान हर के नाए समाए रहे चुका आवन जान पौड़ी धन संपै माया संचिए अंते दुखदाई अंदर महल अंदर मंदर महल सवारी है किच हास साथ ना जाई हर रंगी तुरे नित पाली है किते काम न आई जन लावो चित हर नाम स्यों अंत हुए सखाई जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन करमे नाओ ना पाईए पूरे बिन करमे नाओ ना पाईए पूरे कर्म पाया जाए नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए। महला पहला एक दजै एक दबीए एक ना कुत्ते खाहे एक ना पानी विचो सटीए एक पी फिर हसण पाहे नानक एव न जापे किथे जाए समाहे। बौड़ी तिनका खादा पैदा माया सब पवित है जो नाम रा हर राते तिनके घर मंदिर महल सराय सब पवित है जिनी गुरमुख सेवक सिख जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित हैं जो बोले हर हर नाम हर साते जिनके पोते पुन है से गुरु सिख गुरमुख सिख गुरु पह जाते। श्लोक महला तीजा नानक नामो कुथिया हलत पलत सब जाए जप तप संजम हार सुई सब हिर लिया मुठी दूजे पाए जम दर बदे मारिये बहुती मिले सजाए। महला तीजा संतां नाल वैर कमाम दे दुष्टा नाल मोह प्यार अगे पिछे सुख नहीं मर जमे है वारो वार तृष्णा कदे ना बुझई दुबदा हुए खुआर मुँह काले तना निंदकां तित सच्चा दरबार नानक नाम भी होने ना उरवार ना पार। पौड़ी ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿੰਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧਿਆ

दर्शन पावो इत कर पत करे जो जन तिन पो ओ सगल चुकाई है कहत नाम जो बाहर क्यों परम हो ए संजम हर पाई है मार बाढ़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा कर हला जो क्रंक निस नाद बालहा त्यो मेरा मन मैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ जो धरनी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवल्ला जो कोकिल को अंब बालहा त्यो मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला जो तरुणी को कंत बालहा त्यो मेरा मन रामैया बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यो मेरा मन रामैया साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बेले का हुडी ठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यो नामे मन बीठला पहल प्रिय पुंडरक बना ताचे हंसा सगले जन्ना विष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसाविरा थोन पुरसा दमरा अस असुगा असगा अस उसगा हर का

घर प्रहारी, चरण सरन नामा बाल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की एकंकार, सतगुर प्रसाद हम सार दीन दयाल ना तुम सर, नपति हार क्या की जाय, बचनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दी जाय, हों बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन बोल रहा, बहुत जन बिछरे थे माधो, ए जन्म एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरन बानी सुजस पूर राखो, मानसु मद कर करो चरण हृदय धरो, रसन अमृत ना राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जन घटै जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै रहाओ, साध संगत बिना है।

परमा परम तत् है सदगुर होए लखावे तन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भक्त करंते तिनके का स्वार्ता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जी।

बिरथा रहाओ बिन गुर मुड़ पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण सेवे कभू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सिफल्यो।

आपे सतगुर मुसमुंद मथा आपे मत मत तत कढ़ाए जप नाम रतन महाराम सखी मिलो मिल मंगल सखी मिलो मिल गुण गावा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर हर भक्त दृढ़ी।

गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभ को। जय श्री महला पंजवा। लोड़ीदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गा हो नीके कट कट से बसे।

एकै रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सही संत सफाई तिनकै संग नानक निस्तरिया जिन रस रस हर गुण।

लाए लड़े। प्रेम टगोरी जिनको पाए तिन रस पियो भारी, ताकि कीमत कहण न जाए कुदरत कम हमारी। लाए लय लड़दा जान अपने उदरे उदरन हारे, प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक सरन द्वारे। जसी महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी, उदर दे काम अंत गो ते लाभ हो अपनी चरणी। राव ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संत कै अंचल लाहो बिगम नदी जाए तरणी। सुख संपत माया रस मीठे, ए नहीं मन मैं तरणी। हर दर्शन तृप्त ना

खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत चंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खुजंतिया।

नानक नाम त्याय सुख सबाया चंत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमर

ए करत बिहावे पूज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दुथ है डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्दम करे अनेक हर नाम ना गावी परमे जो न संख मर जन है आवी पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस भोग भोखे किया अपना पावे रतन जन्म हारा।

खसिर खाग छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण निमख मन मैं बूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिनस बार न झूठिया चरण कमल सरनाए नानक आया दुत्तर पै संसार पवाव तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर।

जाके हृदय बसे अमर हर हर तिह जन को करो नमस्कार हर कृपा ते पाए हर जापे नानक नाम इधर बैराड़ी महला चौथा जामन हर हर नाम नित्याए जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख न लागे आए रहा सो जाप सो तप साबरत पूजा जित हर सो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं विसर सब जाए तू बेअंसर कुल पूरा किस की।

मास पुरी विजय आख मसोल जिनू पाई रंग रंगाए रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला सच्चा सो साव सच पावस सचड़ा न्याय करे गसोल काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समालसी बोला यान छत्रे जान सतानवे होर से और पीड़सी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आख सच सुनाई सी सच की बेला तिलंग महला चौथा घर दूजा ओंकार सतगुरु प्रसाद सब आए हुक्म हुक्म खसम हुक्म सब वर्तनी सत साहिब साचा खेल सब हरतनी सलाहो सच सब उपर हरतनी जिस नाही कोय श्री किस लेख क्यों गणी राहो पौन पौनी धरती आकाश घर मंदिर हर बणी विच वरत नानक आप झूठ कहो क्या गणी तलंगी महला चौथा नित नेफल करम कुमाए बफावे दुरमतिया आप जाने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जीतिया ऐसा बाजी सहसारण चेते हर नामा खिन मैं बिनस सब झूठ मेरे मन त्याय रामा रहाव सब सब वेला चित आवे जित आए कंटक काल ग्रसै तिस नानक लै छाए जिस कृपा कर हिरदे वसै तिलंग महला पंजवा घर पहला इको ओंकार सतगुरु प्रसाद खाक नूर कर देंगे आलम दुनिया ए समान जी मीह बर दरखत आओ पैदाश खुदाए बंदे चसम दी दंग फेनाए दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए रहाव गैबान हवान हराम कुदरती मुरदार बखुराए दिल कब्ज कब्जा बादरो दिल कब्ज कब्जा कादरो दो जग सजाए वली नियाब बरादरा अदरबार मिलक सखनाए जब अजराए रे बस्तनी तब चेचकारे बिदाए हवाल मालूम कर दं पाक अल्लाह बगु नानक अरदास पेश बंदर वेश बंदा तिलंग कर दूजा महला पंजवा तुद बिन दूजा नाही कोई तू करतार करे सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानकेक सब उपर पार ब्रह्मदा तार तेरी टेक तेरा आधार हा है तू है तू हो नहार अगम गा दूच पार जो तुद सेवै तिन भव दुख नाहे गुरु प्रसाद नान गुण गाए जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिसको बलहारे तिसके संग तरे संसारे कहु नानक प्रभु लोचा पूरे संत जना की बांचो धूर तिलंग महला पंजवा घर तीजा मेहरवान साहेब मेहरवान साहेब मेरा मेहरवान जी सगड़ को दे दान रहा तू काहे डोले प्राणिया तू राखेगा सिरजनहारे जिन पदाश तू किया सोई दे आधार जिनू पाई मेदनी सोई करदा सारे घट घट मालक दिलां का सच्चा प्रवदगार कुदरत की न जानिए वड्डा वेप्रवा कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैसा तू समराथ गाथ गोचरी जीवपन से तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास तिलंग महला पंजवा कर तीजा करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तो ही सब खलक ही ते पाक रहा खिन मैं था बुदाबदा चार्ज तेरे रूप कौन जाने चल तेरे अंधारे मैं दीप खुद खसम खा के जहां लै मेहरवान खुदाए दिन सरैन जे तू दरा दे सो को दो जग जाए अजराइल यार बंदे जिस तरह धारे गुणे उसके सगला फू तेरे जंदे खैदीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सत सुख तेरा नाव गुरमिल नानक बूझिया सदा एक से गाव

जिस भरावा अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो। साज ने हो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग वसै आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेसरै बिनसै सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्व मैं तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जन।

नाही सर पर हारिया आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब बाद जोनी परम ते जिने को पै दयाल तिने साधु संग पया।

सतगुर प्रसाद। हम कर साज न्याए साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन पाए, पांच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया। आन दिन मेल पया मन मनिया, कर मंदर सुहाए, पांच शब्द तुन अनह

ते तुझ बिन कवन कहाए, काल भी काल पए देवाने, मन राख्या गुर ठाए, नानक अवगण शब्द जलाए, गुण संगम प्रभ पाए, राग सुही महला पहला कर, तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

दर्शन देख पही नह केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सपाए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए कर आयड़ साजना तन खरी सरसी राम हर मोह अड़े साच शब्द ठाकर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग राते अब गण मार गुणी कर छाया पूरे।

भर पायाड़ा भलड़िए आसा मनसा पूरी राम, फिर रावड़िए शब्द रली रब रहया नह दूरी राम। प्रभ दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सबाई, आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वड़ियाई। अमर अडोली अमोली।

जे गुण होवन साजना मिल साज करी जै साज करी जै गुण केरी छोड़ अवगण चलिया पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पेड़ मलिया जिथे जाए बहिया भला कहिया चोल अमृत पीजै गुणा कहो वै वासला कड वास ले जै आप

भगत करे दिन राती गुरमुख आख बखाणी। भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल नाम सच्चा मन पाया। नानक भगत सोहे दर सचे जिन सचो सच कमाया। हर भगतां की जात पत है भगत हर कै नाम समाणे राम। हर भगत करे विचों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणे हर नाम बखाणे पै भगत मीठी लागी। आन दिन भगत करे

करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर एको जानिया गुरमुख प्रवरावे दिन राती अपना साची सोभा होई नानक कामन पिर रावे अपना रविया रव रहिया प्रभ सोई गुर की कार करे तन बालड़िए हर वर दे मिलाए राम हर कै रंग रती है कामण मिल प्रीतम सुख पाए राम मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरते सब थाई सच्चा सिगार करे दिन राती कामण सच समाई हर सुख दाता शब्द पछाता कामण।

तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहा। दुख दीन ना पाओ व्यापे मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिनी नाम सर ऐसे हो देखे खे, पुत्र मित्र बलास बनता टूटते ए ने। मेरे मन नाम नित नित ले, जलत नाही अग्न सागर सुख मन तन देह रहाओ। बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूल तुम्हें, हर भगत रिड़मल साध नानक तेरे काम आवत ए। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुखें दाते संग बस्तो नीत, मरे ना आवे ना जाए बिनसे व्यापत उसन नसीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निधाना ए निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध, नवल नवतन चतुर सुंदर मन मन नानक ते संग बीध। मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत, गुरमंत्र हृदय चितार, चरण शरण भज संग साधु भव सागर उतरे पार। मेरे मन नाम हृदय धार, कर प्रीत मंत्रन लाए हर स्यों अवर सगल विसार। रहा जियो मंत्रन प्राण प्रभ के तू अपन आप निवार, गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो नहार। मारू महला पंजवा तज आप विनसी तापरेण साधु थियो, तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो। मेरे मन आम अमृत पियो, आन साधु विसार होचे अमर जुग जुग जियो। रहा नाम एक रस रंग नामा, नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंद भर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उधर रखे, लगन देतना सेक सोई स्वामी इहां रखे बूझ बुद्ध विवेक। मेरे मन नाम की कर टेक, तिसे बूझ जिन तू किया प्रभ करण कारण एक। प्रभ करण कारण एक रहाओ, चेत मन में तज स्याण छूट छोड़ सगले भेख। सिमर हर हर सदा नानक तरे कई नेक। मारू महला पंजवा पत पावन नाम, जाको नाथ को है नाथ महा भौजल महा तुल हो। जाको लिखो माथ डूबे नाम, बिन घन सात करण कारण चेत न आवे दे कर रखे हाथ। रहाओ साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ, करो कृपा मुरार मा दो सुन नानक जीवे गाथ। मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवाए, कुंकार सतगुरु प्रसाद संजोग विजोग तो रोही हुआ। पंचतात कर पुतला किया, साह के फरमाए रड़ जी देही विच जियो आए पया। जिथे अग्न पख है पढ़हारे, ऊर्द मुख महागुबारे, सास सास माले सोई उथे खसम छिड़ाए लया। विचों गर्भ निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया। आवे जाए पवाइये जोनी, रहन न किथी थाए पया। मेहरबान रख लेन आपे, जी जन सब तिसके थापे। जन्म पदार्थ जिन चलिया, नानक आया सो प्रवान थिया। मारू महला पंजवा वैदो ना वाई, भैनो ना भाई, एको सहाई। राम है कीता जिसो होवै पापा, मलो तो वै सो सुमिरो प्रधान है। घट घटे वासी सर्व निवासी, अस्थिर जाका थान है। आवे न जावे संगे समा, वे पूर्ण जाका काम है। भगत जनाका राखण हारा, संत जीवे जब प्राण अदारा। करण कारण स्मरत स्वामी नानक तिस गुरबान है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मारू महला नौवा, हर को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर अजामल उदरियो, गण का हूं गत पाई। रहा पंचाली को राजसभा में, राम नाम सुध आई। ताको दुख हरयो करना में अपनी पैज बिड़ाई। जेह नर जस कृपा नित गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक मैं यही भरोसा, गही आन शरणाई। मारू महला नौवा, अब मैं कहां करो री माई, सगल जन्म बखियन सौ खोया। सिमरो नाहे कनाई, रहा काल फस जब गर मैं मिली, ते सुध सब सुराई। राम नाम बिन या संकट मैं को, अब होत सहाय। जो संपत अपनी कर मानी, छिन मैं पई पराई। कहो नानक यार सोच रही मन, हर जस कबू ना गाई। मारू महला नौवा, माई मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सरायो। राम भजन नहीं लाग्यो, रहा जम को डंड परयो, सिर ऊपर तब सोबत तैं जाग्यो। कहां होत अब क्या पछताए, छूटत नाहन भाग्यो। ए चिंता उपजी घट में, जब गुर चरणन अनराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मैं पाग्यो। मारू अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वेद प्राण कथे सुने हारे, मुनि अनेका अठसठ तीर्थ बहु घना। परम थाके भेखा साचो साहिब निर्मलो, मन मान एका तू अजरावर अमर। तू सब चालन हारी, नाम रसायन पाए लै पर हर दुख भारी। रहा हर पड़िए हर बूझिए, गुरमती नाम उदारा। गुरपुर पूरी मत है, पूरे शब्द विचारा। अठसठ तीर्थ हर नाम है, किलवे काट नहारा। जल बलोब है जल मथ है, तत् लोड़ अंध अज्ञाना। गुरमती दद मथिय अमृत पाइय नाम निधाना। मनमुख तत् न जाननी, पशु महसमान। हौमै मेरा मरी मर, मर जमै बारो बार। गुर कै शब्दे जे मरै, फिर मरै न दूजी वार। गुरमती जग जीवन मन वसै, सब कुल उदारण हार। सच्चा बखर नाम है, सच्चा वापारा। लाहा नाम संसार है, गुरमती विचारा। दूजे पाए कार कमावणी, नित उटा सहसारा। सची संगत थान सच, सच्चे घर बारा। सच्चा भोजन पाओ सच, सच नाम आधारा। सच्ची बाणी संतोखिया, सच्चा शब्द विचारा। रस भोगन पातशाहियां, दुख सुख संघारा। मोटा नाम तराइय, गल औगण भारा। मानस दात न होवी तू दाता सारा। अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा। गुरु शब्दी दर जोईए मुक्ते भंडार। नानक मेल न चूके सच्चे वापारा।
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਖ ਬੋਹਿਤਾ ਲਾਧਿਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਰ ਬਿਖ ਬੋਹਿਤਾ ਲਾਧਿਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਰ ਕੰਧੀ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਵੰਜੀ ਹਾਥ ਨਾ ਖੇਵਟੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗਫਾਥਾ ਮਹਾਂਜਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ ਤਿੱਥੇ ਪਵਣ ਨਾ ਪਾਵ ਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਆਕਾਰ ਤਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਨਾਏ ਪਵਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਸਭ ਪਿੜਾਈ ਪਾਈਐ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਰੋਸ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸ ਨੋ ਦੀਜੈ ਦੋਸ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰਡ ਸੇ ਜੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰਡ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸ ਮਾਗਰ ਮੱਛ ਫਹਾਈਐ ਕੁੰਡੀ ਜਲ ਵਤਾਏ ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਹਾਈਐ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ ਜਮਨ ਮਰਨ ਸੋਜੇ ਕੀਰਤਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ ਹਉਮੈ

हर रस विभिन्न आपे लेवे आपे देवे ते लोही जगत पे दाता है। जगत उपाय खेल रचाया पवने पानी अग्नि जीव पाया। देही नगरी नौ दरवाजे सो दसवां गुप्त रहाता है। चार नदी अग्नि असराला कोई गुरमुख पूजा शब्द निराला। साकत दुर्मत डूबे दां जय गुरु राखे हर राता है। अप तेज वाय प्रथमी आकाशा तिन में पंच तत् घर वसा सतगुरु शब्द रह रंग राता। तज माया हमें भ्राता है। इमन पीजे शब्द पतीजय बिन नामे क्या टेक टकीजय। अंतर चोर मह घर मंदिर इन साकत दूर न जाता है। इन साकत दूत न जाता है। धुंदर दूत भूत पिहाले खिंचो तान करे वेताले। शब्द सुरत बिना में जावे पत कोई अबद जाता है। कूड़ कलर तन पसमें ढेरी बिना में कैसी पत तेरी। बांधे मुक्त नाही जुग चारे जम कंकर काल पराता है। जम दरबादे मिले सजाई तिस अपराधी गत नहीं काई। करण पलाव करे बिल लावे ज्यो कुंडी मीन पराता है। साकत फांसी पड़े अकेला जम बस किया अंध दुहेला। राम नाम बिन मुक्त न सूझे आज काल पर जाता आज काल पच जाता है। सतगुरु बाजना बेली कोई अथे उथे रख प्रसोई। राम नाम देवे कर कृपा इउ सल सलल मिलाता है। भूले सिख गुरु समझाए उजड़ जाते मार्ग पाए। तिस गुर सेव सदा दिन राति दुख भंजन संग सखाता है। गुर की भगत करें क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश न जानी। सतगुरु अलख कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसे पछाता है। अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत न सो परसन। अहनस निर्मल जोत सवाई घट दीप गुरमुख जाता है। भोजन ज्ञान महारस मीठा जिन चाखे तिन दर्शन डीठा। दर्शन देख मिले बैरागी मन मन सा मारु समाता है। सतगुरु सेवे से प्रधाना तिन कट कट अंतर ब्रह्म पछाना। नानक हर जस हर जन की संगत दी जाए जिन सतगुरु हर प्रभ जाता है। मारु महला पहला साचे साहेब सृजन हारे। जिंतर चक्र तेरे विचारे आपे करता कर कर वेखे साचा बेपरवाह है। वेकी वेकी जंतु पाए दोए पंदी दोए राह चलाए। गुरपुरे बिन मुक्त न होई सच नाम जबलाह है। पड़े मनमुख पर भेद नहीं जानना। नाम न पूजे परम पुलाना लैके बुढ़ी देन उगाही। दुरमत का गाल फाह है। सिमरत शास्त्र पढ़े पुराना बाद बखाने तत् न जाने। बिन गुरु पूरे तत् न पाइए सच सुचे सच राह है। सब सलाह है सुन सुन आख अपे दाना सच पर आख। जिनको नजर करे प्रभु अपनी गुरमुख शब्द सलाह है। सुन सुन आख कीती बाणी सुन कहिए को अंत न जानी। जाको लख लखाए आपे अकथ कथा बुद्धता है। जन्मे को वाजे बाधाए सोहिलड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे तिसर पर मरना किरत पया सुर शाह है। संजोग विजोग मेरे प्रभु किए श्रेष्ठ उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले गुरमुख सील सुनाहा है। नीके साचे के व्यापारी सच सौदा गुरु विचारी। सच्चा बखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चा ओ माहा है। काची सौदी तोटा आवे गुरमुख बणज करे प्रभावे। पूंजी शब्द रास सलामत चुका जम को फाहा है। सबको बोले अपन भाण मनमुख दूजे बोल न जाने। अंधले कीमत अंधली बोली आ गया दुखता है। दुख में जन्मे दुख में रह मरना। दुख में जन्मे दुख में मरना। दुख न मिटे बिन गुर की शरणा। दुखी उपजे दुख दुखी बिन सह क्या ले आया क्या ले जाहा है। सच्ची करनी गुर की सरकारा आवन जान नहीं जम तारा। डाल छोड़ तत्मूल पराता मन साचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे नानक देव पंथ करारे। राम नाम कट अंतर पूजा अवरना दूजा कहा है। ओड़ न कथन सिफत सजाई ज्यों तो भावे रह रजाई। दरगह पहने जान सुहेले हुक्म सचे पातशाह है। क्या कहिए गुण कथा कनेरे अंत न पावे बड़े वडेरे। नानक साच मिले पत रखो त्यों सिर शाह पातशाह है। मारू महला पहला दखणी काया नगर नगर गढ़ अंदर। साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्मायल। आपे आप उपाय दा अंदर कोट छजे हट नाले। आपे लेवे वस संभाले वज्र कपाट जड़े जड़ जाने गुरु शब्दी खोलाइंदा। पीतर कोट गुफा कर जाई नौकर थापे हुक्म रजाई। दसवें पुरख लिख पारी अपे लख लखाइंदा। पौन पानी अग्नि एक वासा अपे कीतो खेल तमाशा। बल्दी जल निर कृपाते अपे जल निध पाइंदा। तरत उपाय तरी तरमशाला उत्पत पत्र लो आप निराला। पमने खेल किया सब थाई कला खिंच टहाइंदा। पार अठारे मालन तेरी चोर टोले पवने ले फेरी। चंद सूरज दो दीप कराखे सास घर सूर समाएंदा। पंखी पंच ओडर नहीं तावे सफले उबर अमृत फल पावे। गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुकाएंदा। चिलमिल चिलके चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गहनारा। अकथि कथो चहन नहीं कोई पूर रहस मन पाएंदा। पसरी किरण ज्योत उजियाला कर कर देखे आप दयाला। अनहद ऋण चुनकार सदा तुन निरपव कै कर वाइंदा। अनहद वाजे परम पव भाजे सकल व्याप रहा प्रभ छाजे। सब तेरी तू गुरमुख जाता दर सो है गुण गाइंदा। आदि निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार से मन भावे हों मैं गर्भ गवाइंदा।
अमृत पिया सतगुरु दिया अवर न जाना दुआ तिया एको एक स्व पर अपरंपर।

संतोख न पावे, बिन गुर मुक्त न आवे जावे। मूल मंत्र हर राम रसायण, मूल मंत्र हर नाम रसायण, कहु नानक पूरा पाया। सच बिना सच बिन भवजल जाए न तरिया, ए समुंद अथा महा बिख भरिया। रह तीत गुरमतले ऊपर हर निरपव कह कर पाया। झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई। नाम विसार चले अभिमानी, उपजय बिनस खपाया। उपजय बिनस बंधन बंधे, हुमे माया कै गल फंदे। जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जंपुर बंद चलाया। गुरबिन मोख मुक्त क्यों पाइये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याइये। गुरमत लेहो तरो गुरमत लेहो तरो भव दोतर, मुक्त भय सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाइये, नानक गुरम भरम चुकाया। गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी। जमके फाहे काटे हर जप, अकोल निरंजन पाया। गुरमत पंच सखे गुर भाई, गुरमत अग्नि निवार समाई। मन मुख नाम जपो, मन मुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया। गुरमुख बूझे शब्द पतीजै, उस्तत निंदा किस की कीजै। चीनो आप जपो जगदीश्वर, हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो। घट घट भोगे पोगुण, हारा रह अतीत सुभाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊंचा। सरवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया। मारू महला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा। लब लोभ तज हो निचिंदा, भ्रम का संगल तोड़ निराला। हर अंतर हरस पाया, निस्दामन ज्यों चमक चिंदायन देखा। ऐन सुजोत निरंतर पेखा, आनंद रूप अनूप स्वरूपा। गुरपुरै देखाया, सतगुर मिलो आपे प्रवतारे। सास घर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिवलाई। देख अदिष्ट रहो लिवलागी, सब त्रे भवन ब्रह्म सुभाया। अमृत रस पाए, तृष्णा पव जाए। अनुभव पद पावे, आप गवाए। ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अत रस मीठा नाम प्यारा। नानक कहो जोग जोग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया। अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन ते धीरा। दो घट घट पौ पंजन पाइया, बहुड़ जो जन्म ना जाया। भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सुभाया। जिन जप जपियो सतगुरमत वाके, जमकार जम कंकर काल सेवक भगता के। उत्तम संगत गत मित, उत्तम जग पौ जल पार तराया। एव पव जल जगत शब्द गुरु तरिये, अंतर की दुविधा अंतर जरिया। पंच बाण ले जम कौ मारे, पंच बाण ले जम कौ मारे। गगनंतर तनक चढ़ाया, साकत नीर शब्द सुरत क्यों पाइये। शब्द सुरत बिन आइये जाइये, नानक गुरमुख मुक्त परायण। हर पूरे भाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला। भगत प्राप्त गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजय। गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा। आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभव। नानक गुरमत सो पाया, अंतर की गत सतगुरु जाने। सो निरपौ गुरु शब्द पछाणे, अंतर देख निरंतर बूझे। अंतर मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसिया। अहनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जस संगत पाइये। हर सहज सहज मिलाया, अंतर बाहर सो प्रभ जाने। रह लिप्त चलते कर आने, ऊपर आज सर्व तेह लोई। सच नानक अमृत रस पाया, मारू महला पहला। कुदरत करणे हार अपारा, कीते का नाही कहो चारा। जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूर। गुप्त प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सवाया। जिसको मिले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए। आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले भरम जाया। मन तन धन ते नाम प्यारा, अंत सुखाई चलन वारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नदर करे गुरु पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सुरेवो, जिन भूला मार्ग पाया। संत जना हर धन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगह जस गाया। सतगुरु मिले ता महल बुलाए, साची दरगह गत पत पाए। साकत ठौर नाही हर मंदिर, जन्म मरे दुख पाया। सेवो सतगुरु समुंद अथाह, पावो नाम रतन धन लाह। बिख्या मल जाए अमृत सरना, वो गुर सर संतोख पाया। सतगुरु सेवा शंकन कीजे, आसा माह निरास रहीजे। संसार दुख बिनासन सेवो, फिर बहुत रोग ना लाया। साचे पावे तिस बढ़िया, कौन न सो दूजा ते समझाए। हर गुर मूर्त एका वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचे पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुने सुनावे काना। अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत न पाया। करै विभूत लगावै भस्म, अंतर क्रोध चंडाल सुहोमै। पाखंड कीने जोग न पाइये, बिन सतगुर अलख

सूर्य व्या समाया दूजे पाए दुष वासा पाँदे मेरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावै दुख दुख माया सतगुरु बाजो संग ना होई सतगुरु बाजो संगत ना होई बिन शब्द पार ना पावे कोई सहजे गुण रवै दिन राति जुत जुत मिलाया कायम बिरख पंखी विच वासा अमृत चुकया गुरशब निवासा उड़ न मुलै ना आवै न जाही ने जिकर वासा पाया क्या सोते शब्द विचार है मोट गौरी परम निवार है आपे कृपा करे सुखदाता आपे मेल मिलाया सदी नड़े दूर न जाण गुरु के शब्द ने जीक पछाणो बिगसै कमल किरण पर गासै प्रकट कर दिखाया आपे करता का सच्चा सोई आपे मार जीवाले और न कोई नानक नाम मिले वढाई आप गवाए सुख पाया मारू सोयले माला जपता एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सचा आप सवार नहारा अवन जैस बिजी कारा गुरमुख सच वसै घटे अंतर सारी सच समाई हे सभना सच वसे मन माई गुर प्रसादी सच समाई गुर गुर कर सदा सुख पाया गुर चरण जितलाई हे सतगुरु है ज्ञान सतगुरु है पूजा सतगुरु सेवी अवना दूजा सतगुरु दे नाम रतन तन पाया सतगुरु की सेवा पाई हे बिन सतगुरु जो दूजा लग हे अब जाए भरम मरया भागे नानक तन की फिर गत होवै जे गुरमुख रह सनाई हे गुरमुख प्रीत सदाय साची सतगुरु ते मंग नाम जाची हुए दयाल कृपाल कृपा नार जियो रख ले वो गुरसनाई अमृत रस सतगुरु चो आया दसवें द्वार प्रगट होया तैन शब्द वजन बाणी सारी सारी समाई हे जिनको करते तो लिख पाई अंदन गुरु गुर करत विहाई बिन सतगुरु गुरु जिन आई गुर चनी जतलाई हे जिस भावै तिस आपे दे गुरमुख नाम पदार्थ ले आपे कृपा करे नाम दे वै नानक नाम समाई हे ज्ञान रतन मन प्रगट पाया नाम पदार्थ सज लै आयो वडियाई करते पाई सतगुरु को बलजाई हे प्रगटिया सूर निष्ठ निस मिटिया दिहारा ग्यान मिटिया ज्ञान मिटिया गुरतन पारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी करम लै सुख पाई हे गुरमुख नाम प्रगटी है सोई चौ जोग निर्मल चल होए नामे नाम रत सुख पाया नाम रैन लिवलाई हे गुरमुख नाम प्राप्त हो वै सारी जग सजा सो वै गुरमुख नाम समाए समावै नानक नाम थ्याईए भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख वखाणी हर हर कर तो सदा मन बेगसै हर चन्नी मन लाई हे अम मूर्ख ज्ञान ध्यान कृष्णाई सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जीव सतगुरु सेव लाई हे जिन सतगुरु जाता दिन एक पछाता शब्द रव रया सुखदाता आपे चिन्ह सा परम पद पाया सेवा सु तुम लै समाई हे जिनको आद मिली बड़ियाई सतगुरु मन वस्या लिवलाई आप मिले जग जीवन दाता नानक अंक समाई हे मारू माला चौतार अगम कुछ सदा विनासी सर्वे रव रया घटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस प्राणी हे जाको राके रखना हारा ताको कोई न सख्स मारा सो ऐसा हर से वो संतो जाकि तुम पाणी हे जा जाप है किश कि तू ना ही ता करता भरपूर समाई सुखे देव रह गई तुम हर त्या विडाणी हे जो जिया की वेदन जाने ते साहब क्यों कुरबाने ते सागे जन कर बिनती जो सर्व सुखा का दाणी हे जो जिया की सार न जाने ते किशना कही जाने मूर्ख से न है लूज प्राणी हर जपी है पंद्रवाणी हे ना कर चिंत चिंता है करते हर देव जल थल जनता सब ते चिंत दान दे प्रम मेरा विच पाथर कीट पखाणी हे ना कर आस मीत सुत भाई न कर आस किस साहब व्यवहार की पराई बिन हर नामे को बेली नाही हर जपी है सरंग पाणी अंद नाम जपो बनवारी सभा समान सा पूरे थारी ज नानक नाम जपो भावे खंडन सुख सहज रण बणी है जिन सेवत सुख पाया सज ही हर नाम समाया जो सरन पर पात्र आख्या जाए पूछ वेद पुराणी जाए जिस हर सेवा लाए सोच जन लागे गुर के शब्द भरम भाग्य विच ग्रह सदा रहे उदासी ज्यो कमल रह विच पाणी हे विच हो मैं सेवा तय न पाए जन्म मरै बिरा वजाए सो तप पूरा साई सेवा जो हर मेरा मन पाणी हे हों क्या गुण तेरे आखा स्वामी तू सर्वियां कंत्र जामी हो मंगो दान तुझे पै करते हर अंद नाम खाणी हे किसी जोर अंकार बोलन का किसी जोर दी बाण माया का मैं हर मिन टेक दारा बना गई तू करते राख मैंने माणी हे नि माणे मान करे तू भावे और केती चकचका बजावे जिसका जिनका पक करे मैं तू स्वामी तिन की उपर गल तो दानी है यारा नाम जिनी सच ते आया तिन गुर प्रसाद परम पद पाया जिन हर सेवा तिन सुख पाया बिन सेवा पछोतानी हे तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ जो हर जपै जिस सो हर जपै जिस गुरमसघात हर की सरन पै हर जापी जन नानक दास दसानी है मारू सोहे माला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कला उपाय धरनी जन धरी जिन धरना गण राय हुक्मे चरनागन उपाय इंद्र मैं बंदी सो प्रभ रख भाई हे जी जंत को संभाए कन कारण समर्थ पाए किन मैं ताप उता पनहारा सोई तेरा सहाई हे मत गर्म मैं जिन प्रत पालिया सास ग्रास होए संग संभालिया सदा सदा जपिए सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई हे सुल्तान खान करे किन की रे गरीब निवाज करे ब्रह्मी रे गर्भ निवारण सर्व सधारण किश कीमत कहन जाई हे सुभदवंता सुधनवंता जिस मन वसे आर भगवंता मात पिता सुधबंध भाई जिन्हें सिष्ट उपाई ये प्रभाए सरना पौनी करना सा संग निचो है तरना मन बच कर मरा

ब्रह्म के मंद रुचि जैसे हमारे चंद माला पंजवा रते रंग पर ब्रह्म के मंद नाथ गुलाल ननक बिन नाम आलू दे आज ती होर ख्याल पावड़ी हार जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा अज ठगी जग ठगिया सेहत उद मार निवाड़ा गुरु पाजुर पा लंघाए अज ता पवाड़ा गुरमत साहब रस भो दा बड़ा खाड़ा साहब इंद्री वस कर दित्यो सतवंत साड़ा जित लायन तलक दीन खिंजताड़ा जो छसोल पाइंदा गुर अंदर वाड़ा गुरु नानक तुटा पाए रो हर वसदा नेड़ा डखने माला पंजवा जा मुआ विचित तू ता हबै सुख लाहो नानक मंजी नानक मन ही मंज रंगावला तेरे तह जनाओ माला पंजवा कपड़ भोग विकार ए हबै पिशार कख लुड़िंदा तन खी जोरत दीदार माला पंजवा क्या तकै ब्याह पास क्या हीड़े आधार थी है संदन की रेन जित लभी सुख दार पौड़ी बिन करमा हर जियो न पाई है बिन सतगुर मनुआ ना लागै धर्म धीरा कल अंदर ए पापी मूल ना तक गया कर करे सो कर पाए एक घड़ी मोत ना लगे चारे जुग मैं सोदया बिन साधु संगत अंकार न पगे हम मैं मूल ना छुटई बिन साधु सतसंग त्रिचर था न पावे जिचर साहेब सुमन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बण पगे हर कृपा दे सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे रखने माला पंजवा